गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। संगीत माला में आप सबका स्वागत है और आप सुन रहे हैं केवल केवल 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर। जी हां, आप ही का कार्यक्रम संगीत माला, जो कि ठीक चालू होता है 11 बजे और चलता है 12:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा आपका मन लगाते हैं हम। आपके ही परिवारों में से, आप ही की कम्युनिटी में से आए हुए हम होस्ट, और आज मैं हूं आपका होस्ट मनीष, जो कि लेके आया हूं बहुत प्यारे प्यारे गाने और बहुत सारी बातें। और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा पा रहे हैं ICCA की सौजन्य से, यानी इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन। तो दोस्तों, आई बिलीव आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा, और छुट्टियों का सीज़न है यानी कि समर हॉलीडेज़, तो बच्चे उन हॉलीडेज़ का आनंद ले रहे होंगे। पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ होगा, वो किचकिच पिचकिच जो मारामारी रहती है जाने की, ऑफिस भागने की, बच्चों को स्कूल भेजने की, उससे भी थोड़ा रिलीफ होगा। और उसी को और आनंदित करने के लिए हम आपका संगीत माला आपके सामने लाए हैं, जो हर शनिवार हम लेके आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जो स्पेशल आज एपिसोड मैं इसको बनाना चाहता हूँ, एक खास बनाना चाहता हूँ। आज हम मना रहे हैं कुछ ऐसे खास सितारों का जन्मदिन, जिन्होंने अपनी कला से सिनेमा और संगीत को और भी खूबसूरत बना दिया। जी हाँ, तो इस आज के जन्मदिन विशेष में हम याद करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे कलाकारों को। तो सबसे पहले मैं चालू करूँगा, ये आज स्टार्ट करता हूँ उनसे, जो सिनेमा के लीजेंडरी हम बोल सकते हैं उनको, लीजेंड हैं और उनसे। लेकिन पहले मैं गाना चलाऊंगा और आप जानिएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और अगर हो सके तो आप कॉल कीजिए 306-242-5002 पर और मुझे बताइए कि हम सबसे पहले किन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ कॉल करना ना भूलें। लेट्स लिसन दिस फर्स्ट सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गुरु दत्त जी के बारे में। बिल्कुल योनी की मूवी का सॉन्ग है कागज़ के फूल, और ये बहुत ही प्यारा गाना था। जो सिंगर जिसमें जो गाना गाया है उन्होंने, गीता दत्त जी ने गाया है, और म्यूज़िक था एस जी बर्मन जी का, और डायरेक्ट किया है गुरु दत्त जी ने। इसमें वहीदा रहमान, बेबी नाज, जॉनी वॉकर, प्रीतमा देवी और महमूद, इन सब ने इनके साथ काम किया था। और ये मूवी बहुत ही बेहतरीन रही थी अपने समय में, जिसने शायद आज भी अगर लोग जानते हैं उस मूवी को और देखी हो तो बिल्कुल उसको हमेशा याद करते होंगे। तो चलिए, हमें कॉल आई और हम शुक्रिया करते हैं। और हमें दो कॉल्स आई हैं, और किरण जी की सबसे पहले जो कॉल आई उन्होंने थोड़ा नज़दीक तक बोला, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि पहचान तो लिया उन्होंने मूवी कौन सी थी, और लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि गुरुदत्त जी का था। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ किरण जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और अनदर कॉल थी हमारे पास आई अशोक जैन जी की तरफ से, जिन्होंने हमें बताया कि ये गुरुदत्त जी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो उन्होंने एक गाना हमें बोला है, एक मूवी थी खिलौना मूवी, और जिसमें हालांकि मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया था, वो गाना मैं चलाना चाहता हूँ खिलौना जानकर। तो चलिए, थैंक यू अशोक जी एंड शैल जी, ये गाना आपको हम डेडिकेट करते हैं, और आप इस तरह से ये सुनते रहिए। ये भी सास के ट्यून से अभी सुन रहे हैं रेडियो शो हमारा।

0: सो ये गाना था खिलौना जानकर तुम मेरा दिल तोड़ जाते हो फ्रॉम द मूवी खिलौना और बहुत ही प्यारा सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी जी ने ये गाया था. थैंक यू सो मच वंस अगेन अशोक जी एंड शैल जी और आपने बहुत ही प्यारा गाना हमें रिक्वेस्ट करा और हम सबको सुनवाया ये गाना. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला गाना चलाते हैं हम. ये गाना प्यासा मूवी का गाना है तो चलिए वो गाना सुनते हैं और आनंद लेते हैं. प्लीज़ कॉल कीजिए 306-242-5002 पर और अपनी फरमाइश हमें ज़रूर भेजिए. आज बहुत ही अलग तरीके के गाने आपको मिलने वाले हैं तो अपनी फरमाइश भी आप उसमें हमें भेज सकते हैं और हम जरूर सुनवाएंगे वो गाना.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को

क्या बात है, क्या प्यारा गाना था फ्रॉम द मूवी प्यासा। और ये मूवी भी सुपर डुपर हिट थी अपने टाइम में, 1957 में आप सोचो ये मूवी आई थी, और इस गाने ने इतनी धूम मचाई थी। इस मूवी के गाने सारे ही बहुत ही बढ़िया थे और बहुत दिल को छू लेने वाले थे। इसमें उनका साथ दिया था गुरुदत्त जी, खुद डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे, और उनके साथ माला सिन्हा, वहीद रहमान, कुमकुम, जॉनी वॉकर। तो बड़ी ज़बरदस्त टीम थी ये पूरी, कलाकारों की, फनकारों की। तो बहुत ही प्यारी मूवी थी। आगे बढ़ते हैं और हमारे को रिक्वेस्ट आई है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ गुरुदत्त जी के बारे में। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को 25 में बेंगलोर में हुआ था, और बहुत जल्दी उनके उनका स्वर्गवास हो गया था 1964 में एट द एज ऑफ 39। तो काफ़ी जल्दी हमें वो सिनेमा को उन्होंने अलविदा कह दिया था। तो दैट वॉज रियली सैड, लेकिन जो भी समय उनका रहा और उन्होंने बहुत ही प्यारा अपना क्या कहते हैं फिल्म सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, और उन्होंने बहुत ही सब अच्छा मुकाम उन्होंने इतने कम समय में पाया। तो अगला गाना जो मैं चलाना चाह रहा हूँ वो है चौदहवीं का चांद हो, जिसकी फरमाइश हमें दो जगह से आई है। एक हैं कुमार जी सास्केटून से, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी है, और किरण जी जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी हमें यही गाने की फरमाइश की है। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना प्यारा सॉन्ग चलाने की फरमाइश करी है। और आई बिलीव ये हर किसी के दिलों का ये मेराज करता है ये गाना, क्योंकि ये गाना है भी वाकई में चौदहवीं का चांद। कहते हैं ना कि हजारों लाखों करोड़ों में ये सॉन्ग है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन हेमंत जी और कुमार जी एंड किरण जी।

बातें, क्या बात है। सॉन्ग्स ना चल रहे हैं और गुरुदत्त जी के और लोग की फरमाइशें बहुत प्यारी प्यारी आ रही हैं, और मैं वाकई में मज़ा आता है जब कॉल्स आती हैं और लोगों की तारीफ़। ख़ास तौर पे मैं क्या कहूँ, मतलब इतना कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे हमारे को कमेंट्स देने के लिए, हमारी प्रशंसा करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए। तारीफ़ जब भी हम सक्सेस है हमारी कि हम क्या आप लोग सुन रहे हैं, तो हमारी तारीफ़ उसी नहीं है कि आप जितने हमारे लिसनर बढ़ते हैं हमारी वो तारीफ़ अपने आप हो जाती है कि हाँ हम वाकई में कुछ कर रहे हैं। तो चलिए, ये गाना हमें अभी वजात भाई का सॉन्ग आया, फ़ोन आया, और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें प्रेज़ किया और बहुत अच्छी बातें भी बोली। उनके लिए, उनको डेडिकेट करता हूँ मैं ये सॉन्ग उनकी तरफ से सबके लिए। ये गाना बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये सदाबहार सॉन्ग कहता हूँ मैं इसको, और ये इतना दिल को छू लेने वाला दर्द भरा सॉन्ग है। तो ये गाना हम सुनते हैं गुरुदत्त जी का।

0: क्या
1: कुछ
0: बात है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये गाना वाकई में जितनी बार भी सुन लो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मेरे तो भी गूज बम्स आ गए, और मतलब ऐसा होता है जैसे बस ब्लड की जैसे मतलब कि सब खून दौड़ रहा है पूरे रंगों में। मतलब इतना गाना इतना इतना अंदर तक ले जाता है, और इफेक्ट है लाइफ का जो हम कभी छुटा नहीं सकते। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग। और वक्त हो चला है दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेने का, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे आप ही के कार्यक्रम संगीत माला में, जो कि आप सुन रहे हैं 90.5 FM CFCR रेडियो स्टेशन पर, जिसके प्रायोजक है ICCA। चलिए लेते हैं एक ब्रेक।
2: 90.5 FM in Saskatoon is currently conducting on-air transmitter testing. You may notice intermittent broadcast changes during this time. You can reach out to us with any questions at 306-664-6678.
3: Birkenstock sandals, blunt stone boots, don't have socks, covers the feet on the day or night commutes.
4: We've got an incredible selection of Birkenstocks, with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstocks waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
3: Now all the ladies and the gentlemen, they all ask how and where. The Broadway Shoe Repair. The Broadway Shoe Repair.
5: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
6: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with REMAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
7: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
0: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, और मैं हूं आपका होस्ट मनीष। आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर, और जिसके प्रायोजक ICCA, दैट इज़ इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन। और आपको हमें बता दूं कि ICCA ये कार्यक्रम तो हमारे तक पहुँचा पाता ही है, उसमें हमें हेल्प करता है। साथ में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो सास्केटून में वो करते हैं, और आने वाली एक्टिविटीज़ उनकी जो है 18 और 19 जुलाई को काउंसलर कैंप ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसके मेन जो करने वाले हैं ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ICCA है, और आई बिलीव काफ़ी लोगों ने उसमें एनरोल भी किया है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो कम्युनिटी के लिए काम होता है वो ICCA बहुत करती है, तो आप भी ज्वाइन कीजिए ICCA को, और उसमें आप बहुत सी इवेंट्स के लिए आप हिस्सेदार बन सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डेफिनेटली वैसे भी आप बहुत वेलकम हैं जो भी हमारे इंडियन कम्युनिटी के इवेंट्स होते हैं। तो मैं जो सॉन्ग अब आने वाले हैं जो प्ले करने वाला हूँ वो फरमाइश का सॉन्ग है, और ये आया है माही, सुनना चाहती हैं सॉन्ग ओ सॉरी विधि सुनना चाहती हैं सॉन्ग ओ माही फ्रॉम द मूवी डंकी। सो लेट्स लिसन द सॉन्ग। थैंक यू सो मच विधि फॉर दिस सॉन्ग।

तो दोस्तों, ये सॉन्ग था ओ माही, जिसे विधि ने रिक्वेस्ट किया था और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। और मूवी तो आपको पता ही होगा, टंकी, आई बिलीव लाइक लेटेस्ट मूवी आई है पीछे कुछ समय पहले, या शाहरुख खान की मूवी थी और तापसी पन्नू ने काम किया था इसमें, और काफ़ी मज़ा रहा था इस मूवी को। तो आई बिलीव आप लोगों ने देखी होगी। तो नेक्स्ट जो सॉन्ग है हमारे पास, रिक्वेस्ट करी है अनीश सेठ ने, और ये मूवी है टेबल नंबर 21, और ये सॉन्ग है मन मेरा। थैंक यू अनीश जी फॉर गिविंग दिस दिस सॉन्ग। और बात ये अच्छा लग रहा है कि जब हमारे पास सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं और हम भरती अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स चला रहे हैं। चलिए सुनते हैं अगला सॉन्ग।

क्या बात है, क्या सॉन्ग था मन मेरा फ्रॉम द मूवी टेबल नंबर 21। मूवी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि कितनी हिट हुई थी कि नहीं, लेकिन कुछ सॉन्ग्स इसके बहुत फेमस थे और काफ़ी डिफरेंट टाइप की मूवी थी ये। कुछ गेम के ऊपर थी और डिफरेंट, और इसे गाया था गजेंद्र वर्मा ने। ये सॉन्ग थोड़ा सा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग। थैंक यू वंस अगेन अनीस जी का फॉर द सॉन्ग। और नेक्स्ट सॉन्ग जो फरमाइश हमें आई है वो है सानवी और हर्षवी से। ये सॉन्ग है और लेटेस्ट मूवी धुरंधर से घेरा हुआ। तो चलिए ये सुनते हैं गाना, और थैंक यू सो मच। और मुझे पता चला कि ये लोग कैंपिंग कर रहे हैं, और अगर हम इनकी कैंपिंग में अगर कुछ एंजॉयमेंट कुछ अच्छा आनंद ला पा रहे हैं तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, अपनी कैंपिंग में इसका हमारे इस कार्यक्रम को हिस्सा बनाने के।

क्या बात है, क्या सॉन्ग था घेरा हुआ। और इस सॉन्ग ने तो धूम मचाई मचाई, और मूवी ने भी कम धूम नहीं मचाई। आई होप आप सभी ने ये मूवी देखी होगी धुरंधर, और ये भी दो पार्ट्स में आई, धुरंधर एंड धुरंधर पार्ट टू। सो काफ़ी चर्चे हुए इस मूवी के, और काफ़ी लोगों ने इसको प्रेज भी किया, देखा मतलब काफ़ी लोगों ने। और इसमें मुख्य भूमिका में थे रणवीर सिंह और सारा अर्जुन और अक्षय खन्ना, और इस गाने को गाया था अरिजीत सिंह ने। तो अपने आप में ही आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेंस गाना होगा, कितना प्यारा गाना। अरिजीत जब गाते हैं तो डेफिनेटली गाने की अलग ही रंग हो जाते हैं। तो अगली फरमाइश हमें आई है, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सानवी एंड हर्षवी, जो ये गाना आपने हमें सुनवाया, थैंक यू सो मच। अगले गाने की फरमाइश हमें आई है फ्रॉम दरिया, खुशहाली, हेशा एंड रेयान। ये फिल्म सुनना चाहते हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं जाने क्या होगा, और फ्रॉम द मूवी कांटे। तो चलिए ये गाना सुनते हैं, और थैंक्स अगेन वंस अगेन टू द ऑल द लिसनर्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू हु आर गिविंग हमें जो सॉन्ग्स भेज रहे हैं, हमें फरमाइश भेज रहे हैं। और आप सब भी ना चूकिए, कॉल कीजिए 3062421002 5002 पर। चलिए

क्या बात है, रामा रे फ्रॉम द मूवी कांटे, जो 2002 में आई थी और मेजर स्टार कास्ट के साथ ही मूवी थी। इसमें बड़े बड़े दिग्गज थे, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और भी कई कलाकार। तो ये मूवी के साथ ही गाना भी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हमने अभी बात करी थी आज गुरुदत्त जी के बारे में और इनके कुछ गाने हमने सुनवाए। तो अगले जो मैं आज सिंगर ले रहा हूँ वो हैं कैलाश खेर जी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1973 को हुआ था। तो उनका भी जन्मदिन अभी ये हफ्ते में गया है, तो आई बिलीव हम उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। तो उनका एक गाना जो सोलो सॉन्ग तो नहीं, लेकिन हाँ ये गाना बहुत फेमस रहा, चांद सिफारिश फ्रॉम द मूवी फना से। तो शान के साथ उन्होंने ये गाना गाया था कैलाश खेर जी ने। तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं और फरमाइशें तो हमें आ ही रही हैं, तो वो भी हम आपको सुनवाते रहेंगे बीच बीच में, और आप हमें अपनी फरमाइशें भी प्लीज़ भेजते रहें।

क्या बात है, ये गाना था चांद सिफारिश फ्रॉम द मूवी फना, जिसमें शान और कैलाश खेर ने गाना गाया था और बतौर भूमिका में थे आमिर खान और काजोल। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, फ्रॉम द मूवी चांदनी चौक टू चाइना, चक लेन दे, जो जिसमें कैलाश खेर जी ने ये गाना गाया है और इसमें काम किया अक्षय कुमार जी ने और दीपिका पादुकोण ने। तो ये मूवी भी बहुत डिफरेंट थी, और लेकिन गाना ये जो है इसका गाया है स्पेशल कैलाश खेर जी ने। चलिए सुनते हैं।

0: this time. But you can always reach us with any questions at 306-664-6678.
1: वेलकम बैक टू संगीत माला, जो कि आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर, और इसके प्रायोजक हैं ICCA, इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम के अलावा ICCA बहुत से कार्यक्रम करती है, इवेंट्स करती है पूरे साल, जो कि आप तो देखते ही हैं. और जो लेटेस्ट आ रहा है नेक्स्ट वीक में, वो है काउंसलर कैंप, जो इसमें काफ़ी लोगों ने अपने आप को एनरोल किया है, और पासपोर्ट संबंधित जिनकी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं वो उसके अंदर अपने काम कराएंगे. तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और कम्युनिटी के लिए काम करते रहते हैं, तो अप्रिशिएट के. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ICCA.ca पे जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी. तो दोस्तों, आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि खाली यही कार्यक्रम नहीं, बहुत से एहसास के ढूंढ में, क्योंकि सीज़न है समर सीज़न जिसको हम बोलते हैं, कि इस समय लोग हर जगह आपको सास के ढूंढ में बहुत से इवेंट्स देखने को मिलेंगे. जैसे कि TD सास जैज़ फेस्टिवल चल रहा है, जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी, अलग अलग सिंगर्स बैंड्स आ रहे हैं, और आज उनका लास्ट डे है, कल उनका शायद आज ही लास्ट डे है. तो आप भी अगर शामिल होना चाहें, ले सकते हैं आनंद म्यूज़िक का, तो बहुत सारे इनके डाउनटाउन में लोकेशंस हैं, वहाँ पे आप जाके आनंद दे सकते हैं. तो देखते हैं म्यूज़िक लवर देखिए कितने हैं, और कैनेडियंस भी, और हम लोग का तो है ही, हम म्यूज़िक के बगैर कहाँ चलते हैं. तो चलिए, अगला गाना जो हम सुनाना जा रहा हूँ वो है अल्लाह के बंदे, सॉन्ग के बोल हैं, और मूवी थी वैसा भी होता है, जिसे कैलाश खेर ने ये गाना गाया है. तो चलिए सुनते हैं गाना और आनंद लेते हैं इस गाने का.
2: क्रंच द रिंग. टूटा टूटा.

0: के फिर उड़ना।
1: क्या बात है, अल्लाह के बंदे गाना गाया कैलाश खेर ने। इनकी आवाज़ में एक अलग चार्म है, अलग मेलोडी है जो छूती है दिल को वाकई में। तो ये ऐसे थे हमारे, मतलब सॉरी, ऐसे हैं कैलाश खेर जी, और बहुत ही प्यारे गाने गाते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं, मेरी लिस्ट में तो और तो कलाकार हैं, लेकिन शायद समय की सीमा है, तो आगे जो अगला मैं लेने जा रहा हूँ वो कलाकार हैं नीतू सिंह जी। उनका भी हम जन्मदिन जुलाई इसी वीक में उनका पड़ता है, 8 जुलाई का उनका जन्मदिन था, तो उनकी 68 ईयर्स की एज उनकी हो गई है। और अभी भी आप उन्हें देख सकते हैं, कभी लेटेस्ट मूवीज़ में भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी है, तो बहुत ही अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और कितने समय से, 1975 में उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत करी थी। तो चलिए उनकी एक मूवी का सॉन्ग सुनते हैं, एक मैं और एक तू, जो खेल खेल में मूवी आई थी, और इसमें ऋषि कपूर ने उनका साथ दिया था, और बतौर ऐसे लाइफ पार्टनर भी थे, और ये मूवी में तो उनके साथ रहे ही। चलिए सुनते हैं हम ये गाना।

0: ये क्या बढ़िया गाना था, एक में और एक तू, दोनों मिले इस तरह, बहुत ही प्यारा गाना जी। आर्टिस्ट इसमें जो सिंगर्स है वो आशा भोसले और किशोर कुमार जी ने गाना गाया था, और इस मूवी में काम किया था ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राकेश रोशन, अरुणा ईरानी। और अगली गाना जो मूवी का है वो है दीवार मूवी का गाना, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, शशि कपूर के साथ ये नीतू सिंह ने काम किया था। हालांकि अमिताभ बच्चन भी इसमें थे, और ये गाना लेकिन जो पिक्चराइज किया हुआ है वो है शशि कपूर जी और नीतू सिंह। चलिए सुनते हैं गाना और आनंद लेते हैं।
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है?

क्या बात है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं फ्रॉम द मूवी दीवार। और अगला गाना वो भी बहुत ही फेमस सॉन्ग है, तेरे चेहरे से, फ्रॉम द मूवी कभी कभी। जी हाँ, इसमें ऋषि कपूर और नीतू सिंह और ने काम किया है, और जिस गाने के बोल गाए हैं किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने। तो ये चलिए सुनते हैं गाना।

क्या बात है, गाना था तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती फ्रॉम द मूवी कभी कभी। दोस्तों हम नज़दीक आ चुका है हमारा समय विदा लेने का, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ समय बाकी है। तो ये नीतू सिंह जी के को हमने डेडिकेट किए हैं सॉन्ग्स। और लास्ट जो मैं एक और लेके आया था सिंगर जिनका जन्मदिन 10 जुलाई यानी कि कल था, अंतरा मित्रा, ये भी बहुत ही प्यारी सिंगर हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ के गाने गाए हैं तो, और अच्छे अच्छे गाने। तो उनके मूवीज़ के लास्ट दो सॉन्ग्स मैं चलाना चाहता हूँ जो कि उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अंतरा मित्रा जी को। गेरुआ गा फ्रॉम द मूवी दिलवाले। तो और ये काजोला शाहरुख खान पे किया था पिक्चराइज, और इसके सिंगर अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा हैं। तो चलिए सुनते हैं।

दोस्तों ये गाना था गेर हुआ फ्रॉम द मूवी दिलवाले। तो वक्त हो चला है आखिरी सॉन्ग का, तो ये गाना मैं चलाऊंगा भीगी सी भागी सी फ्रॉम द मूवी राजनीति, जिसमें पिक्चराइज़ इसकी रणबीर और कतरीना कैफ के ऊपर, और जिसे गाया है मोहित चौहान और अंतरा माली ने, मित्रा ने। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं गाना चलाऊं, आप सबसे आज विदा लेता हूं। आप सुन रहे हैं संगीत माला और 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर, और मैं आज आपका होस्ट मनीष था। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये सॉन्ग्स पसंद आए होंगे आज के डिफरेंट। मैंने लेने तो सॉन्ग्स बहुत सारे थे लेकिन नहीं हो पाता सब, और बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी फरमाइशें मुझे आईं और वो गाने भी मैंने चलाए। दोस्तों कहते हैं ना, जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं होती, बल्कि किसी कलाकार के सफ़र और उनकी योगदान को याद करने का एक खूबसूरत मौका होता है। आज हमने कैलाश खेर के सूफी सुरों का जादू महसूस किया होगा, आई बिलीव आप सब ने भी। नीतू सिंह की एवरग्रीन मुस्कान को याद किया होगा और गुरुदत्त जी के अमर सिनेमा को सलाम किया, और अंतरा मित्रा की मधुर आवाज़ को जो मैंने लास्ट सॉन्ग में चला रहा हूँ। तो मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप अपना वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं और उनका ख्याल रखें और सुनते रहिए संगीत माला। टाटा बाय बाय, सही हो। और आप इसी तरह हमें कॉल करते रहें 306-242-5002 पर, और चलिए सुनते हैं ये गाना।